0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: his statement that how he managed to get radicalized, but before that, how he managed to pay several visits to Israel, despite the fact that he comes from Oman or his origin is something which was a big, big red flag for any flight in entering into the Israeli territory. The second point, that whether he had a plan B of targeting a U.S. base in Jordan, then why did he enter into the Saudi airbase, Saudi airspace, is also a red flag for the Saudi authorities. If he had any grudge with Israel, and perhaps so, because Jordan is a very close and a very old ally of Israel in the Middle East. It is one of the first countries to have brokered peace with Israel. And that rightly suggests so that perhaps he had...
1: I apologize, I'm interrupting you. Stepping up the campaign on the vote theft and removal of Gyanesh Kumar, members of the India bloc will be holding a march today. Ahead of that march at 10:30 a.m., the BJP is addressing a press conference. Listen in.
2: Election Commission में क्या हो रहा है? पूरा विषय जो Supreme Court में चल रहा है, वो क्या हो रहा है? कुछ दिनों से Special Intensive Revision SIR को लेकर भ्रांतियां और fake news फैलाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में कल आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका, एक पिटीशन दाखिल किया गया था, और उस याचिका का मुख्य डिमांड था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, दैट ही शुड बी रिमूव्ड. कल नोटिस जारी हुई है, वो एक प्रक्रिया है कि दोनों पक्ष रहेंगे और उस पर सुनवाई होगी. मुख्य विषय कल से जो चल रहा है वो यह है कि मुख्य चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन या परिवर्तन किया है जो कि गैर कानूनी है, और इसलिए मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक अभियान चलाना है और उन्हें हटाना है. इस पूरे विषय को मैं आज समझाने वाला कल, और क्यों समझाने वाला हूं यह भी बता रहा. कल दोपहर बाद राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और नोटिस इश्यू किया, तो राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था. राहुल गांधी जी ने एक्स में कुछ कहा था. राहुल गांधी जी ने एक्स में क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने एक्स में कहा था, नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट दैट ज्ञानेश कुमार चेंज्ड Form 6 illegally and unilaterally. This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. Ye Rahul Gandhi ji ka tweet hai, jo main aapko dikhana chahta hu. Ye Rahul Gandhi ji ne kal tweet kiya tha, aur uske saath unhone इलेक्शन कमीशन के 26 सितंबर 2026 के इस प्रेस स्टेटमेंट को लगाया था. मैं इसमें आज आपके सामने एक एक करके राहुल गांधी की जो झूठ के पुलिंदे हैं उनको खोलूंगा. इस पूरे एक्स के पोस्ट में, इस ट्वीट में राहुल गांधी ने चार भ्रामक शब्दों का, चार फेक शब्दों का प्रयोग किया है. पहला, फॉर्म 6 हैज बीन चेंज्ड इलीगली. दूसरा, फॉर्म 6 चेंज्ड यूनिलैटरली. तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी. और चौथा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष अर्थात राहुल गांधी कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सहायता की है इलेक्शन जीतने में, और हम एक स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाएगी कि किस प्रकार से जनता से हम जीत कर आए हैं और किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. पहला है, इस पूरे विषय में आप यह भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया है, वह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं. इलेक्शन कमीशन ने भी इसको डिबंक किया है. मगर यह पूरा फॉर्म 6 का विषय कल से क्यों उठा है? कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की. वो टिप्पणी क्या थी फॉर्म 6 को लेकर, मैं पढ़ रहा हूं. वो टिप्पणी थी, any modified Form 6 has not been approved by us. Let's be clear, when the record is produced, we would like to see who has modified. Supreme Court ne kaha, humne koi modification Form 6 mein ho is prakar ka aadesh nahi diya tha. Jab record mein vishay aayega, to hum dekhenge ki kya Form 6 mein modification hua. Jis prakar yachika mein tha ki Form 6 illegal hai, Form 6 ko hata diya jaye, aur jis prakar Rahul Gandhi ne tweet kiya ki Form 6 illegal hai, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया. अब है राहुल गांधी जी का झूठ नंबर एक. झूठ नंबर एक है फॉर्म 6 को लेकर कि फॉर्म 6 इलीगल है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई और 26 सितंबर 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस स्टेटमेंट नंबर 120 जारी किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन. और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, पॉइंट 3 को, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है. मगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा वो मैं पढ़ देता हूं, जिसको राहुल गांधी ने अंडरलाइन किया है. द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. फॉर नॉन SIR पीरियड द फॉर्म्स एप्लीकेबल एज पर रूल्स The registration of electors rule 1960 will be used. The declaration attached to form 6 for SIR has been upheld. Form 6 mein koi modification nahi hua. Ek declaration attached hua hai us form 6 ke saath, jisko Supreme Court ne upheld kiya hai. Ab main aapko Supreme Court ne is declaration ko lekar, is attachment ko lekar kya kaha hai, उस विषय में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मैं लेके आया हूं, वो पढ़ के सुनाऊंगा. ये 124 का जजमेंट है जो 27 मई 2026 को SIR के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो उसमें फॉर्म 6 के विषय में क्या कहा था और उसके साथ अटैच्ड डिक्लेरेशन के लिए क्या कहा था, मैं तीन जगह मार्किंग करके लाया हूं. उन तीन पन्नों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा वाक्यों को पढ़ता हूं. पहला पेज नंबर 110, पेज नंबर 57 आते हैं, फर्स्ट पेज 57, पेज नंबर 57 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, उसमें एक एफ क्लॉज है, एनी न्यू वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 6 along with a declaration form in annexer D of the impugned order. कोई भी नया वोटर फॉर्म 6 के साथ एक declaration form देगा जो कि annexer D में है. और ये order के किस अंतर्गत आता है, E1.1.2 statutory requirements of recording reasons. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस में पॉइंट एफ पे स्पष्ट रूप से पेज नंबर 57 में ये कहा गया है. अब हम आते हैं पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 पैराग्राफ नंबर 152, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये पैराग्राफ देख लीजिए, ये पैराग्राफ नंबर 152 है. इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, इट इज ट्रू दैट फॉर्म 6 एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 सेट्स आउट अ फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाउएवर द सेम इज टेलर्ड टू द प्रोसेस ऑफ रिवीजन कॉन्टेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 21(2) ऑफ द आरपी एक्ट एंड मे नॉट इन ऑल सिचुएशंस बी केपेबल ऑफ लिटरली एप्लीकेशन टू एन एक्सरसाइज ऑफ the present nature. The commission therefore retains a degree of residual authority to formulate an appropriate documentation framework.

वर्क सूटेड टू द एक्सिजेंसीज ऑफ ए SIR. जो अभी SIR चल रहा है उसके लिए ये फॉर्मसिस पर्याप्त नहीं हो सकता है सारे डाटा के लिए, इसलिए लिमिटेड पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उसमें कुछ एक्सीजेंसीज ऐड करे. द फॉर्मुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रजीम मस्ट दस रिफ्लेक्ट कैलिब्रेटेड बैलेंस इन ड्रॉइंग फ्रॉम द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क वाइल अडेप्टिंग इट वेयर नेसेसरी टू इफेक्टिवली सर्व द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए अगर ऐसे एडिशन की आवश्यकता पड़े तो अपने लिमिटेड पावर के अंदर ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है. तो यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर 152 में कहा है. अब आते हैं आखिरी पन्ना 110, 124 के 110वें पन्ने पर, पैराग्राफ नंबर 161. सुप्रीम कोर्ट कहती है, अकॉर्डिंगली, सब कुछ सुनवाई करने के बाद, अकॉर्डिंगली We hold that the documentation regime prescribed by the Commission represents a considered exercise of its administrative discretion in furtherance of its constitutional mandate. The classification of documents, including the exclusion of certain categories, is based on intelligible criteria having a direct nexus with the objective of ensuring the integrity of the electoral roll. We are therefore unable to hold that the impugned documentation framework is arbitrary or violative of the statutory scheme. Supreme Court कहती है ये जो documentation format commission ने दिया है हम इससे कोई आपत्ति नहीं रखते हैं और हमें ये arbitrary या इस पे किसी प्रकार का violative nature नहीं दिखता है. कहीं भी फॉर्म 6 को मॉडिफाई नहीं किया गया है, एक अटैचमेंट उसमें अटैच किया गया है जिसके विषय में मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 पैराग्राफ को पढ़ के सुनाया. अभी नोटिस गया है, सुनवाई भी नहीं हुई है. CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे. उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और झूठ और फरेब का माहौल, भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं. अब राहुल गांधी का झूठ नंबर दो है, उन्होंने एक तो कहा फॉर्म 6 इलीगल है, दूसरा उन्होंने कहा इसमें यूनानिमिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने एक साथ निर्णय नहीं लिया, तीनों कमिश्नर एक पेज पे नहीं थे. झूठ, राहुल गांधी झूठे हैं, क्योंकि 26 सितंबर 2026 को जो अपना 120वां प्रेस स्टेटमेंट था उसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा, the order for SIR in Bihar issued on 24th June 2025 was issued with the unanimous approval of the commission. This order has been upheld by the Honorable Supreme Court of India in its judgment dated 27th May 2026. आप सब जानते हैं कि बहुत स्पष्टता के साथ एक प्रेस स्टेटमेंट आया था, जिस प्रेस स्टेटमेंट में तीनों इलेक्शन कमिश्नर एक साथ बैठे थे. वो फोटो भी आपके सामने मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर वहां एक साथ बैठे थे और उसके बाद उन्होंने जारी किया ये प्रेस स्टेटमेंट. ये है, तीनों कमिश्नर एक साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने जारी किया है कि यूनानिमसली डिसीजन हुआ है, सबके हस्ताक्षर है. तो यहां राहुल गांधी दूसरा झूठ, दूसरी बार उन्होंने यहां भ्रम फैलाने की कोशिश की है. उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी का झूठ नंबर तीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प बीजेपी. भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन हेल्प कर रही है. ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट 19 फरवरी 2025 को हुआ. तीनों लोकसभा के इलेक्शन 14, 19 और 24 का इलेक्शन, अनेक राज्य और अनेक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन उससे पहले हो चुके थे. यह सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके समक्ष रखा है. तो यह कहना कि इलेक्शन कमीशन के कारण हम लोकसभा के चुनाव जीते हैं ज्ञानेश जी के कारण, यह सरासर गलत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति

19 फरवरी 2025 को हुई है। इसी को मानते हुए जो राहुल जी ने कहा है, मैं राहुल जी से एक सवाल पूछता हूं। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय वीएस संपत जी इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, क्या वीएस संपत जिनका अपॉइंटमेंट 11 जून 2012 को हुआ था और जो जनवरी 15 2015 तक रहे कार्यरत, क्या उन्होंने, जिनका अपॉइंटमेंट यूपीए ने किया था, सोनिया जी ने किया था, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और क्या उनके मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती? इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे। हमारी मदद ज्ञानेश जी नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद ज्ञानेश जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद गणेश जी कर रहे हैं। बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के देवता गणेश जी। भारत के जनता के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है और वो जानते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो लोग कैप्टन स्मिथ के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, उनको वोट नहीं देना है। वोट देना है तो उसको देना है जिसने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहे। और राहुल गांधी का झूठ नंबर 4, क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। हमने क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं दो चीजें इसमें दिखाना चाहूंगा। यह एक लिस्ट है, केवीके सुंदरम 1958 से 1967 तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहे कांग्रेस के समय। बाद में इनको चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन बनाया गया, पद्म विभूषण दिया गया। क्या यह असॉल्ट था, क्रिमिनल असॉल्ट? नागेंद्र सिंह 1972 से 73 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। क्या यह भारत के लोकतंत्र पर क्रिमिनल असॉल्ट था? आर के त्रिवेदी 1982 से 85 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म भूषण दिया गया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें गवर्नर बनाया। क्या ये क्रिमिनल असॉल्ट था इंडिया के डेमोक्रेसी पर? वी एस रमा देवी जी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उनको गवर्नर बनाया कांग्रेस ने। क्या ये क्रिमिनल असॉल्ट था भारत के डेमोक्रेसी पे? टी एन सेशन 1990 से 1996 तक इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 96 में 1996 में इलेक्शन लड़ा। क्या ये क्रिमिनल असॉल्ट था? एम एस गिल 1996 से 2001 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो राज्यसभा के मेंबर बने, बाद में मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर बने। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? जे एम लिंगदो 2001 से 2004 तक यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और बाद में कांग्रेस ज्वाइन किए। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? एन गोपालस्वामी जो 2006 से 2009 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्हें पद्म भूषण दिया गया, क्या वो क्रिमिनल असॉल्ट था? या जिस प्रकार नवीन चावला जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बनाया, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ उन्हीं के सरकार में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मैडम प्रेसिडेंट को, प्रतिभा पाटिल जी को, उनके खिलाफ लिखा था कि इस व्यक्ति का, नवीन चावला जी का, कांग्रेस के प्रति बायस है, जब ये वॉशरूम जाते हैं तो कांग्रेस को फोन करके सारा विषय बता देते हैं, उसके बावजूद भी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बताया, वो क्रिमिनल असॉल्ट था। अंत में ईवीएम के ऊपर हमला किया है कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। 61A ये एक्ट कौन लेके आया था और ईवीएम देश में किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजीव गांधी 61 लेके ए लेके आए थे। राजीव गांधी जी ने 1989 में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ईवीएम को देश में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में पहली बार ईवीएम द्वारा चुनाव कराया गया। क्या आज मार्च के दौरान राहुल गांधी राजीव गांधी डाउन डाउन का नारा लगाएंगे? और बैलॉट से, जहां तक बैलॉट पेपर का सवाल है, आप बैलॉट से चुनाव चाहते हैं? अभी अभी जब मैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, त्रिपुरा में विलेज कमिटी इलेक्शंस के नतीजे घोषित हुए हैं, अभी घोषित हुए हैं।

बैलॉट पेपर पे चुनाव हुआ है, 4,597 सीट्स पे चुनाव हुआ है, नतीजे एनडीए 4,320 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी, कांग्रेस 14 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी बैलॉट पेपर पे। राहुल जी बैलॉट पेपर पे केवल 14 जीते हैं 5,000 में से, ये औकात है कांग्रेस पार्टी की, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आखिर में मैं 10 सवाल आज राहुल गांधी जी से पूछता हूं और आशा करता हूं कि 10 सवाल का जवाब राहुल गांधी जी दे। एसआईआर का विरोध करते समय कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जो 2.8 करोड़ मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, क्या उनको नहीं हटाया जाता? क्या मृतकों का नाम इसी प्रकार से सूची में रहने दिया जाता? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट चोरी से सांसद बने हैं? वो खुद भी तो सांसद है। अगर हम वोट चोरी से सांसद बने हैं तो क्या वोट चोरी से वो भी सांसद बने हैं? क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल की सरकार वोट चोरी से बनी है? क्या 1952 से 1914 तक 12 एसआईआर हुए, क्या यह 12 एसआईआर के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी वो अवैध सरकार थी? पांचवा सवाल, 6.8 लाख विपक्षी बूथ, जो विपक्षी बूथ लेवल के बीएलए थे, ये बीएलए ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे थे कि नाम डिलीट हो गया, हमें ये नाम ऐड करना है? इनके बीएलए क्या कर रहे थे? इनके बीएलए काम ना करे तो क्या हमारे बीएलए इनके लिए काम करे? छठा सवाल, 1993 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन केवल और केवल एक व्यक्ति करता था, उस समय के सरकार के प्रधानमंत्री, मतलब आप अपना पपेट बैठाते थे इलेक्शन कमीशन पे? इसका जवाब भी राहुल गांधी दे। विपक्ष जीते, खुद जीते तो निर्वाचन आयोग ठीक है, और हार जाए तो निर्वाचन आयोग हाय हाय और लोकतंत्र हाय हाय। क्या चुनावों का विरोध करके कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान में अराजकता फैलाने की प्रयास नहीं कर रही है? आज जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, अराजकता और अनार्की फैलाने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? नवा सवाल है, सही तरीके से राहुल जी अपने आत्मा पे, अपने हृदय पे हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या अराजकता फैला करके ये आपके रीलॉन्चिंग का प्रयास नहीं है क्या? खाट यात्रा, दो अच्छे लड़के, साइकिल यात्रा, ये सब फेल होने के बाद क्या आप अपनी रीलॉन्चिंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और मैं अंतिम सवाल से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा। अंतिम सवाल है कि राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, राजीव गांधी के खिलाफ हाय हाय के नारे आज लगेगा या नहीं लगेगा, इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी दे। मैं आखिरी में एक विषय आपको कहना चाहता हूं, ये जो बार बार लोगों को चिपकाने की कोशिश की गई है कि 13 करोड़ लोगों का नाम डिलीट करने की कोशिश एसआईआर में किया गया है, अभी मेरे को दिखाया गया है कि बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, अभी अभी हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चुनाव होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव मैंने आपको त्रिपुरा का बताया, ये बैलेट पेपर पे होते हैं। अभी देखिए, बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये किस प्रकार हुआ? बैलेट पेपर से ही हुए ना, और अभी आपको त्रिपुरा का भी उदाहरण दिया था। मगर अंत में इसको ध्यान से सुन लिया जाए, यह एक कोशिश की जा रही है देश में भ्रम फैलाने की, 13 करोड़ लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इसको चिपकाने की कोशिश की जा रही है। जब मतदाता पत्र का शुद्धिकरण होता है और उसमें 2.8 करोड़ लोगों को मृत पाया जाता है, तो क्या मृत लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए क्या? इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी। 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, जब बीएलओ जाते हैं तो वहां पर 3 करोड़ लोग अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित लोगों का नाम सूची में चढ़ना चाहिए क्या?

0: क्या छापा वोट, बचपन में जितने आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, लगभग हम उम्र हैं, आप थोड़ी यंग हैं, बचपन में हमने देखा है बूथ रिगिंग क्या होता था, लठ लेकर किस प्रकार से मार करके एक व्यक्ति जाके सब बटन दबाता था या बैलॉट डालता था। छापा वोट बंगाल में क्या होता था यह हमने देखा है। आज छापा वोट नहीं है, आज लाठी के बल पर कोई बूथ में जाकर बैलॉट पेपर नहीं डाल सकता है। मृत आदमी के नाम पर आप और मैं जाकर वोट नहीं कर सकते हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? 6.3 करोड़ लोग स्थायी रूप से स्थान बदल चुके हैं, मतदाता हैं। एक हमारी बहन है, वो शादी करके बिहार से यूपी जाती है, तो क्या उसका नाम बिहार से यूपी शिफ्ट नहीं होना चाहिए? क्या क्यों नहीं होना चाहिए? उसका अधिकार जहां है, अब वो अपने पति के घर गई है, वहां से वोट करेगी, उसका अधिकार वहां गया है। पहले आधार कार्ड में पिता का नाम था, अब पति का नाम है, आप उसमें कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ नाम डुप्लीकेट था, यहां भी मैं वोट दे रहा था, बिहार में भी वोट दे रहा था, अब वो 1 करोड़ नाम शुद्धिकरण कर दिया गया है, 2 राज्यों में आप वोट नहीं दे सकते हैं। क्या यह चीज सही है या नहीं है? शुद्धिकरण हो रहा है भारत के लोकतंत्र का। जो लोग शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं वो मार्च करेंगे, जो लोग शुद्धिकरण चाहते हैं वो सही तरीके से वोट करेंगे और सही सरकार चुनेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, ये जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका एक ही ध्येय है। अब इन्होंने अनुभव किया है कि शायद ये सत्ता में कभी नहीं आएंगे। बंगाल तक इनका आस बंधा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हम बंगाल जीत जाएंगे। बंगाल में जिस प्रकार से लोगों ने पटखनी दी है कि भैया तुष्टिकरण नहीं चलेगा, भैया ये जो आपकी टोलाबाजी है, एक्सटॉर्शन है, ये नहीं चलेगा, अब हमें विकास चाहिए, उसके बाद से इनका मनोबल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी जी सरकार में नहीं आने वाले हैं, और जब इनको पता चल गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में नहीं आने वाले हैं, जिसको कहते हैं ना, खीर मैं नहीं खा पाऊंगा तो मैं खीर खिंडा दूंगा, मुझे खीर नहीं मिलेगी तो मैं खिंडा दूंगा, कोई नहीं खा पाए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार पे नहीं आ पाएंगे तो गैर लोकतांत्रिक तरीके से हम एक साधारण व्यक्ति को जो चुन के आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है उसे भी रहने नहीं देंगे। हम देश में ऐसा माहौल बनाएंगे। कौन चाहता है देश आगे बढ़े? देश की जनता चाहती है देश आगे बढ़े। विपक्षी दल नहीं चाहते देश आगे बढ़े, और कई ऐसे देश होंगे भारत से बाहर जो नहीं चाहते होंगे कि भारतवर्ष आगे बढ़े। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा होगा देश के बाहर, देश को अटकाने की, देश को भटकाने की, देश की नीतियों को लटकाने की। बहुत सारे विपक्षी पार्टी उसमें एकजुट हो गए होंगे विपक्षी ताकतों के साथ। इस षड्यंत्र में एक भी व्यक्ति शामिल ना हो बुद्धिमता के साथ। मैंने कहा ना, गणेश हमारे साथ है, बुद्धि विवेक, देश के लिए क्या ठीक है ये आप अपने मन में सोचिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ पत्थर की तरह खड़े हो जाइए, क्योंकि देश नहीं झुकने देना है, देश को आगे बढ़ाना है।
1: एक छोटा सा सवाल और, कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई इस पूरे मसले पर, ऐसा याद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एआईएल और एक नोटिस जारी किया गया, तो जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और राहुल गांधी ने जो ट्वीट कहा और उसने मिसमैच ऐसा कहा जा रहा और वो उन्होंने भ्रामक तक रखने की कोशिश की आरोप लगा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी?
0: देखिए, राहुल गांधी जी की ये आदत है। राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला, कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। धन्यवाद।
2: The opposition is on the streets heading to the Election Commission headquarters this morning demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar, and at almost exactly the same time the BJP has mounted its own defense with Sambit Patra turning to the Supreme Court's SIR judgment to argue that the Election Commission had the authority to prescribe additional documentation for the SIR exercise. The opposition, though, is taking its battle with the Election Commission directly to the EC headquarters this morning, with India Bloc MPs marching from Parliament. And yesterday's Supreme Court hearing, you must note, has materially changed the terrain of this protest. The Supreme Court made it clear that it had not approved the modified Form 6, despite the Election Commission having earlier said that the SIR declaration attached to Form 6 had been upheld by the court. The CJI has now said the court wants to see the ECI's records, establish who modified what, and the ECI for its part says it did not alter the original Form 6 and that an additional declaration was attached for the SIR process. The Congress is saying that the CEC, Gyanesh Kumar, must resign immediately. The Samajwadi Party is saying that BJP have won polls by unfair means. The Trinamool Congress is saying that Gyanesh Kumar is a vote chore, with the RJD adding in that there is a need to restore our democracy. Tejshi, tracking all the latest details for us, joins us live currently. Tejshi, we've heard what Sambit Patra has to say. We know that there is a opposition India Bloc MP protest march that's happening at the moment with them heading towards the Election Commission headquarters. But tell us, why did the BJP feel the need to conduct this press conference, and why has the Election Commission not come and clarified the facts?
3: Well, you know, it has been a usual political vocabulary when it comes to such kind of protest, especially in the past few days what we have been witnessing when the opposition has been raising questions over the Election Commission. The BJP has been attacking the Congress party, and not just that, but also in fact questioning. So as to what about all those states where the Congress itself or the non-BJP parties are in the power? What about that? Also, in fact, today in the press conference, we just heard Sambit Patra also talking about Gyanesh Kumar, the current Chief Election Commissioner, not being the Chief Election Commissioner back in 2014, 2019, and then subsequently in the other elections, in the state assembly elections as well. So that point of time also, will the why Congress party has been, you know, raising questions on those elections back then in 2014 and 2019. Now cut again to what's going to happen in just few minutes from now, as we are reporting, just few meters away from the parliament and just few meters away from the Election Commission, where there have been multiple levels of barricading being done. 5 levels of barricadings have been placed over here. What we can also see is that there's a massive police deployment on left and right hand side. Apart from that, the Samajwadi Party workers, the Congress Party karyakartas have started gathering, and what we are given to understand is that in just some time from now, the opposition MPs will be just gathering over here. Here is the Transport Bhavan. You can see this is the picture of Transport Bhavan. So when the MPs will be walking, primarily they will be stopped over here at this very location. From here, what we are as of now given to understand is they will not be allowed to move here. Next, if they cross this particular level of barricading, then there comes another building where the second layer of barricading. So till there, they will be stopped, and from there, they'll not be allowed to move further. And multiple levels of barricading have been done. But opposition MPs are very much adamant that they're not going to stop, no matter what. They will, time permits or if the situation permits, they will be sitting on dharna here as well, or they will also be willing to move forward towards Election Commission, even if they are being stopped. Now we'll just move forward and show you the kind of security deployment that has been put at place, and also talk about Parmeshwar, that who all are going to join this entire protest. So what we are given to understand is the DMK and Aam Aadmi Party are not going to join, because Aam Aadmi Party has made its stand very much clear. You keep on showing this barricades. Aam Aadmi Party has stated that we are not the part of the India bloc, hence we are not going to join. DMK MPs have stated that they have some engagements as far as the bipoles in the state of Tamil Nadu is concerned, and other MPs who are in the national capital

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: NDTV breaks biggest health update on Captain Smith. Sources tell NDTV Captain Smith suffered a depressed skull fracture during the cockpit assault, with a fragment of bone pushed inward toward the brain. The serious injury required surgery, which was performed in Saudi Arabia. Terrorist co-pilot Hamami's chilling words. According to reports, he told interrogators he wanted to die a martyr, said he did it as revenge for Gaza. Hamami had plan B of crashing the plane into a US base in Jordan. According to a media report, Israel was ready to shoot down the plane with 175 passengers. Israeli jets scrambled over Fly Dubai. The plan was dropped after the flight diverted to Saudi Arabia. U.S. President Donald Trump's big claim says Iran behind Fly Dubai terror, but U.S. Vice President Vance defers, says no proof to establish the Iran Fly Dubai horror link. Heavy showdown is underway in Delhi as opposition leaders are protesting outside the office of the Election Commission of India. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Akhilesh Yadav, Sanjay Raut, Manoj Jha, Supriya Sule are leading that protest along with others. Akhilesh Yadav, we know as of now, has been detained. Remember, like I said, right at the top of the show, Rahul Gandhi breached the barricades and climbed on top of the barricade. He was waving the Tiranga while standing on the barricades. You had opposition MPs seeking the resignation of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Those are live visuals on your screen as I speak. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, who are sitting under a banyan tree. They, of course, also have leaders and protesters surrounding them, right next to them. But there is also a lot of police deployment in the area. Both Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi were taken into a bus to detain them. But moments later, they walked out. They walked into gate 3 of Akashvani Bhavan. They were then at gate 4 of Akashvani Bhavan. As of now, they're not too far from gate 4, sitting under that banyan tree. They're planning the roadmap for the day ahead. We don't know how long this protest is going to continue for. At one moment, when you saw them getting into the bus, one thought they would be taken to a police station. Like our political editor Vasudha had pointed out then, that's a normal procedure that is followed, where they're detained briefly and then they are let off. But as of now, Rahul Gandhi digging in his heels along with opposition leaders from the India bloc, demanding the resignation of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Gyanesh Kumar's office just meters away from where they stand. As of now, the BJP this morning held a press conference where they did denounce this move by the India bloc, taking on Rahul Gandhi and also questioning his claims of Form 6 and the SIR.
1: Are democracy ko restore karna, vote ko restore karna, ye hamara maksad hai.
2: बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: हम नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं। उन्हीं के लोग तो बताए कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है, और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है। तो हमारा नहीं, उनका है। तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए।
2: आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे पुलिस ने
1: रणनीति, अरे लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार।
3: ये दलों ने ये निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े, तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे। इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं।
4: बेईमानी जो कर सकते हैं वो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर ले, बंगाल लूट लिया ना, क्या करोगे बाद में, इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर ले।
5: आज चाहे बंगाल में जो जिस तरीके से एसआईआर किया गया है और सारा देश में हर जगह में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ये दर्शाता है कि लोगों में रिजेंटमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता था हमारे देश में बहुत बड़ा एक वर्ग है, चाहे वो देश का किसी भी कोने में हो, सबको लगता था कि सरकार काम नहीं करेंगे तो सरकार को सबक सिखाएंगे, सरकार को आने वाला चुनाव में दिखाएंगे। आप बीजेपी इतना कॉम्प्लिसेंट क्यों है? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़े, चाहे गैस का रेट बढ़े, चाहे पेट्रोल का रेट बढ़े, चाहे केरोसिन का रेट बढ़े, चाहे अनाज का रेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको पता है भाई गणेश कुमार बैठा है वोट चोरी करके जीती है।
6: वो सब तो सामान्य रणनीति है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि मोदी जी डर गए, अमित शाह जी डर गए, ये डर उनसे करवा रहा है। किस बात का डर? एक बेईमान को बचाने का डर, क्योंकि उस बेईमान ने अपनी बेईमानी का के तौर तरीकों से आपको सरकारें डिलीवर की। शर्म आनी चाहिए खास करके इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद और कल सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद।
2: लेकिन बीजेपी बचाओ में कह रही है कि आप लोग अनार्की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए।
6: इंडियन एक्सप्रेस अराजकता का हिस्सा है, बहुत लोग लिखते हैं उसमें, राम माधव जी अक्सर लिखते हैं, पीएम ने भी लिखा था हाल में, मुझे याद आया। मतलब ये किसी भी सत्ता की सबसे बड़ी चीज होती है जब वो कमजोर होने लगे ना, अराजकता, फॉरेन हैंड, ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला।
7: आयोग के समर्थन बीजेपी क्यों खड़ी होके आ गई? क्योंकि उन्हीं को फायदा मिल रहा, चुनाव एक जो बेईमानी कर रहा, जो धांधली कर रहा, जो वोट काट रहा, उसका सारा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, इसलिए बीजेपी कह रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि वोट चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, ये नारा एकदम सही है। इसलिए जो है जम के विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हर जगह बॉम्बे में देखो लाखों लोग सड़कों पर,
2: कह रहे हैं आप लोग
7: जनता को विश्वास नहीं रह गया।
2: राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश है, भले ही अराजकता हो जाए।
7: राहुल गांधी 2004 में लॉन्च हो गए तो तब से लड़ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ जो है बीजेपी का प्रोपोगंडा है, क्योंकि उन्हीं को सबसे फायदा मिला इसका, तो मिली भगत जो इनकी थी चुनाव आयोग से, वो खुल के आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत हुआ, आप इतने करोड़ लोगों के वोट नहीं काट सकते।
8: The new thing you will see is that the BJD has also joined us.
9: Okay.
8: So, a lot of people will be joining us.
0: And Ankit Tyagi now live with me. I'm going to cut across to Ankit. Ankit, are the Gandhi still sitting there on Dharna? Has the police deployment increased? What can you tell us on what's happening on the ground?
10: As we spoke, in fact, the presence of the Congress MPs has increased here. They've managed to make their way in. Pawan Khera has also come in. Charanjit Singh Channi was already here. Some refreshments have also come in for the party which is protesting under the banyan tree. I can also see Rahul Gandhi's vehicles have also been brought in. So whether he will go in his own vehicle, he will be detained, we will have to wait and see. But the police is on one side patiently waiting. There was conversation that took place between the police and Mr. Gandhi and Priyanka Gandhi. Dipinder Hooda, Pawan Khera, KC Venugopal, the General Secretary in charge of the Congress Party, also made his way in. So all of these people, Parniti Shinde, all of them are here at this moment. So it started with Rahul and Priyanka Gandhi. Dipinder Hooda followed soon. Then B.V. Srinivas. After that, Charanjit Singh Channi, and now KC Venugopal and Pawan Khera have also joined in. So some bolstering of the Congress party's presence here, at this protest under the banyan tree on gate number 4 of the Akashwani Bhavan. Now, it's very interesting, you know, where we were just trying to get in a word from, okay, what I can see, there is a bus being brought in. I don't think so. You would be able to see that on your screen at this moment because of this banyan tree. A bus is being moved in. So the indications are, if that bus is coming in, that means that Rahul Gandhi and the other MPs will be detained and will be taken in that bus. What we are so some sort of.

और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया, तो मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों से और देश से अनुरोध करूंगा कि आकाशवाणी में बैठे हुए कुंठाधिपति, ईर्ष्याधिपति और आधुनिक गोयबल्स राहुल गांधी जी के स्वयं के और उनके नेताओं की वाणी पर जरा आप गौर फरमाएं। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को देखें।

0: आ रहे हैं कैसे आप जांच करेंगे और लगभग 45 लाख ऐसे नाम हैं जो डुप्लीकेट आ रहे हैं या वही नाम बार बार रिपीट हो रहे
1: हैं
2: 70 लाख नाम तीन खंडों में तेलंगाना में स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से गलत पाए गए हैं। अगर कोई सरकारी शोध हो और सही रूप से बहुत समय पूरा मिले तो ये 70 लाख 7 करोड़ भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं।
0: वो चोरी करने के बेसिक ब्लॉक दो सिस्टम है, एक सिस्टम वोटर लिस्ट को टैम्पर करने का, वोटर से ऐड सब्ट्रैक्ट, और दूसरा सिस्टम ईवीएम का सिस्टम।
3: भिन्न अवसरों पर पिछले कुछ वर्षों में स्वयं राहुल गांधी जी और उनके अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, कि अनेक जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी बोल रहे हैं और तमाम नामी गिरामी लोग बोल रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, 4-5 सवाल। पहली बात तो यह कि जिन 13 करोड़ वोटर्स की बात आप कर रहे हैं, इसमें 2.8 करोड़ लोग मृतक हैं, 6.3 करोड़ लोग स्थानांतरित हैं और 1 करोड़ लोग डुप्लीकेट हैं जिनका 2 जगह वोट है और 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, नॉन ट्रेसेबल हैं। अब हम यह पूछना चाहते हैं, और इनमें भी यदि किसी के पास कोई भी आधार होता है तो उन्हें मौका है कि वो कागज दिखा के आ सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे कि जब आप ये फिगर बोलते हैं तो उसमें डेड एंड डुप्लीकेट है या नहीं। और दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहते हैं, आज देश के सामने जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति होता है वैसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? 1 दर्जन, आधा दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पर क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है और विदेश में जाकर भी यह सब बोला है। वैसे तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है, उन्होंने मार्च 2023 में जाके विदेश में बोला था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इंडिया। अब क्या कहा जाए, वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका ने तो कह दिया भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से होती है और चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। खैर, दूसरा प्रश्न, भारत में पहली बार किसी भी व्यवस्था में जांच नहीं हो रही है। ये पहले भी कई बार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जांच हो चुकी है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनका वास्तविक हक है, उन्हें मिलेगा कि नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद जब राशन कार्डों की जांच हुई तो 5.8 करोड़ राशन कार्ड ऐसे लोगों के पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। जब मनरेगा के कार्डों की जांच हुई तो 2019 के बाद 4.45 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे और मनरेगा की मजदूरी पा रहे थे। जिन लोगों ने 5.80 करोड़ राशन खाया, जिन्होंने 4.45 करोड़ की मजदूरी खाई, वही लोकतंत्र खाने का प्रयास कर रहे हैं डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा। और हम बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहते हैं कि इन वोटर्स की अगर जांच हो और उसके बाद यह स्थापित हो सके कि इन्हें मताधिकार वास्तविक वोटर को मिलना चाहिए या नहीं, जो आपके नेता बोल रहे थे और आप कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए, तो इसमें किसका फायदा है? कांग्रेस से हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वोटिंग राइट देकर बगैर किसी जांच के, पुनः कह रहा हूं, बगैर किसी जांच के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा क्या कांग्रेस किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है? तीसरा प्रश्न, कांग्रेस ने बताया कि पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, उससे पहले आप कितने राज्यों में सत्ता में थे? मैं बात कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, उससे पहले कांग्रेस 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों से, यानी 2003 से पहले राहुल गांधी के राजनीति में पदार्पण का जो कहर बरपा है कांग्रेस पे, उससे पहले वो 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो चुके थे। 1967 से तमिलनाडु 39 सीट्स, 1977 से पश्चिम बंगाल 42 सीट्स, 1990 से यूपी बिहार 120 सीट्स, 1995 से गुजरात 26 सीट्स, 1999 से उड़ीसा 21 सीट्स। इन 228 लोकसभा सीटों में आज आपके लिए 10 सीटें पाना भी मुश्किल होता है। यह किसके कर्मों की वजह से है? क्या इसका वोट से, जब भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी, जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं नाम भी नहीं था 67-77, उस जमाने से जो आप गायब हैं, वो किसकी वजह से है? तीसरा, हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आपने आज तक कितने विधानसभा चुनावों में जाकर अपनी पार्टी के लिए डेरा डाल के चुनाव प्रचार किया है? कभी रहे 15 दिन,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: only on MTV Top.
1: I know the game and the game behind.
2: Welcome back. A heavy showdown underway in Delhi as the opposition leaders are protesting outside the office of the Election Commission of India. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Akhilesh Yadav, Sanjay Raut, Manoj Jha, John Brita, Supriya Sule led this protest along with others. Akhilesh Yadav was detained by the Delhi police briefly while Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are sitting in Dharna. Opposition MPs are seeking the resignation of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Opposition leaders have hit out at the Chief Election Commissioner. Akhilesh Yadav said the BJP has won all elections by unfair means. UBT MP Sanjay Raut says Gyanesh Kumar is the enemy of the nation. Meanwhile, the BJP slammed Rahul Gandhi over his claims of Form 6 and SIR and said that Rahul is spreading lies. There were dramatic scenes as well with Rahul Gandhi and climbing over barricades as well. Right now, something of a standoff is underway. You can see those visuals that are coming in right now. And this is as one is waiting to see what happens next. There is this, you know, standoff of sorts that is underway right now. And Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are there sitting on Dharna. And this is the Akashvani building where they've been sitting inside. And I think he's going to address the media in a short while from now. So there you can see Rahul Gandhi has approached, you know, the where the media has been waiting on the other side of the wall, and he will, the other side of the gate, and he will be speaking to the media. Let's listen in. All right, we will try and get you what he said, but this is after dramatic scenes earlier today where Rahul Gandhi and Abhishek Banerjee climbed over the barricades that had been put up by the Delhi police as they marched from Parliament towards the Election Commission of India office. Currently, they are in the Akashvani building speaking to the media. Let's listen in to what has been said so far.
3: अरे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, वोट को रिस्टोर करना, ये हमारा मकसद है.
4: बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
3: हम नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं. उन्हीं के लोग तो बताए कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है, और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है. तो हमारा नहीं, उनका है. तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए.
4: आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे पुलिस ने
3: रणनीति, अरे लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार.
5: सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे. इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है. और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं.
6: कोर्ट में बेईमानी जो कर सकते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर ले, बंगाल लूट लिया ना, क्या करोगे आप? इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर ले.
7: ये मार्च नहीं निकाल रहे, हार की खीज निकाल रहे हैं. हार जाओ तो खीजो, आरोप लगाओ, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो. लेकिन ये तो सोच लो विपक्ष के मित्रों कि जिस व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत आप केरल में जीते, क्या वो जीत अवैध है? आप कर्नाटक में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? आप हिमाचल में जीते, क्या वो जीत अवैध थी? लोकतंत्र का अपमान मत करो, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम मत करो, और विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओगे तो देश को अराजकता की आग में झोंकने का पाप करोगे।
8: आज चाहे बंगाल में जो जिस तरीके से एसआईआर किया गया है और सारा देश में हर जगह में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ये दर्शाता है कि लोगों में रिजेंटमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता था हमारे देश में बहुत बड़ा एक वर्ग है, चाहे वो देश का किसी भी कोने में हो, सबको लगता था कि सरकार काम नहीं करेंगे तो सरकार को सबक सिखाएंगे, सरकार को आने वाला चुनाव में दिखाएंगे। आप बीजेपी इतना कॉम्प्लिसेंट क्यों है? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़े, चाहे गैस का रेट बढ़े, चाहे पेट्रोल का रेट बढ़े, चाहे केरोसिन का रेट बढ़े, चाहे अनाज का रेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको पता है भाई गणेश कुमार बैठा है वोट चोरी करके जीत।
9: और ये भिन्न भिन्न अवसरों पर पिछले कुछ वर्षों में स्वयं राहुल गांधी जी और उनके अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, कि अनेक जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी बोल रहे हैं और तमाम नामी गिरामी लोग बोल रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है।
2: Now, Rahul Gandhi has spoken to the media after the march and after he was sitting on dharna at the Akash Vani Bhavan. He spoke to the media saying that more than 300 opposition MPs marched from Parliament to the Election Commission to meet the election commissioners today. He's saying that we represent crores of Indians, and why aren't the election commissioners meeting us, and why is the police stopping and threatening us?
10: विपक्ष के सारे एमपी, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद आए हैं। हम इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं, वोट चोरी पर गणेश कुमार से हम सवाल पूछना चाहते हैं और यहाँ पे हमें रोका गया है। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम सबको यहाँ पे रोका जा रहा है। यह हिंदुस्तान का आवाज है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके सांसद हैं, आपकी आवाज है। यहाँ इनको अदानी जी के कारण मोदी जी, अमित शाह, मोहन भगवत जी यहाँ रोके हैं, देश को हाईटेक कर दिया है।
2: Well, let's go across to Ankit Tyagi, who's been tracking all these developments, the opposition MPs march from Parliament to the Election Commission office. They're currently at Akashvani Bhavan. Ankit, tell us what is happening right now. We heard Rahul Gandhi and it seems there's something of a standoff in place right now. Or what is taking place?
11: You know, there is something that just happened. Rahul Gandhi, in fact, have been sitting here for the last couple of hours along with a few Congress MPs. He got up, he spoke to the media from behind these very, peripheral wall of the Akashvani Bhavan gate number 4. And then I saw them. I think the plan is to try and march towards gate number 4, which is locked. If you get out of the gate number 4 of the Akashvani Bhavan, you only have to take a left and walk 250 meters, and that is where the Nirvachan Sadan is. So Rahul Gandhi, while speaking to the media, very clearly said that they don't understand when they want to, in fact, go and they are demanding, and this was a protest march of the opposition MPs. Why is the police threatening and not allowing them to go? That's the charge that they are making at this moment. And he spoke to the media and went back and sat there. You would see in our frame, we are also stuck like a fly on one of the boundary barricade here. And Ashwini is trying to give you a sense of how where the Congress MPs are sitting in with Rahul Gandhi under that banyan tree. Priyanka Gandhi was sitting for the last couple of hours. It's gotten up now. Right next to her is KC Venugopal, and I can see Pawan Khera there. Charanjit Singh Channi of the Congress party is also here. So is Parniti Shinde and few other MPs, Imran Pratapgari and others of the Congress party, Dipinder Hooda as well. Now, 10:30 is when this entire protest march began from the Makar Dwar in the parliament. From there, the opposition MPs walked for about 10 minutes and were able to reach the Akashvani Bhavan. Once they reached Akashvani Bhavan, that's where the police had put up multi-layer barricading. They sat down there, protest continued for an hour, and then they were picked up. Once they were picked up, Rahul and Priyanka Gandhi were in the same bus. Their protesters, the Congress Karyakartas, came in front, sat in front of that bus, and Rahul and Priyanka Gandhi were able to get out of that bus, and they just walked in from gate number 2 of the Akashvani Bhavan, and then they walked across gate number 3 to gate number 4, and they tried to make their way out. This is when the police was busy detaining other MPs. Some conversation going on about what to do next. I can see Priyanka and Rahul Gandhi speaking to each other. B.B. Srinivas and others are also speaking with K.C. Venugopal. Priyanka Gandhi is going somewhere. We yet don't know where is she going. As she goes, there is her security paraphernalia. And about 8 to 10 Delhi police personnel, those who are also going there. I think what she has done will try, because the banyan tree is blocking our view.
2: All right, Ankit Tyagi there giving us those details of what's taking place at Akashvani Bhavan as the opposition and Congress, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra, planning to go to the Election Commission office. They continue to be seated there right now, and we will continue to bring you all those developments. Rahul Gandhi hitting out at the police, hitting out at the government, also saying, why are police stopping us, saying that we want to meet with the election commissioners. Why are we being stopped? We represent crores of Indians across the country. Well, moving on for the moment to some breaking news coming in, and the Delhi police have arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. Remember, that's been a huge controversy after protests in Delhi over the long weekend. But the video is fake, is what the police are saying now. The Delhi police cyber team has traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reels and posters using AI tools. Police allege the content was created on the 3rd of October and circulated the following day. Investigators are probing a larger question. Was this the work of one individual, or was there a wider network behind the creation, funding and circulation of this fake content?
12: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज़ एंगल है, एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था, और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
2: All right, with that, we'll sip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: High rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NDTV Profit.
6: जिस नाम में भक्ति और मर्यादा है, जिस नाम में हर दिल की आस्था है,
7: राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की,
6: जग के सुंदर दो नाम, सीताराम, सीताराम. देखिए रामायण हर रात 8 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर.
8: सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एड स्माइल्स टू योर लाइफ.
9: हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी
5: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है।
1: All right, yet another BJP press are now taking place. Let's listen into what is being said.
2: आप सब याद करिए, राहुल गांधी ने एक पोस्ट डाली थी और इस पोस्ट पे राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस एक महिला पत्रकार के साथ में या दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने महिला पत्रकार के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो आप सबने देखा, जिसमें यह साबित हुआ और जिसमें तथ्य सामने आए कि कैसे जो पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ वो वीडियो झूठा वीडियो था। वो एक नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक एआई वीडियो को जनरेट किया और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है और ये एक पैटर्न बन चुका है। और ये पैटर्न अगर आप सभी ध्यान से देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम चलाता है, उस पैटर्न में उसका एंड ऑब्जेक्टिव झूठे नैरेटिव्स के जरिए देश के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना होता है। तो अगर आपने इस केस में देखा होगा, 3 अक्टूबर को एक फर्जी एआई वीडियो जनरेट होता है कोई एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर द्वारा। ये इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसका नाम नदीम अहमद है, और उस वीडियो को पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम 24 घंटे तक एम्पलीफाई करता है। राहुल गांधी तो ये तक लिख देते हैं कि किसी पत्रकार के साथ बदसुलूकी हुई। मतलब एक कंसर्टेड एफर्ट के जरिए, इन अ कॉन्शियस एफर्ट, ये दिल्ली पुलिस और स्टेट को विलनाइज करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें तथ्य होते तो समझ में आता, परंतु ये झूठ सामने आया। सो स्टेप वन इस पूरे इकोसिस्टम का रहता है कि किसी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के जरिए एक फेक वीडियो या एक फेक नैरेटिव को आगे रखो। उस फेक नैरेटिव को राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम 24 घंटे तक अलग अलग हैंडल्स के जरिए फैलाने का प्रयास करता है। अब ये नेचुरल है कि अगर पुलिस के ऊपर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो उसकी जांच करेंगे। पर तब तक ऑलरेडी कांग्रेस इकोसिस्टम उसको वायरल करने का प्रयास करता है और देश में ऐसा माहौल बनाता है कि जो उन्होंने बोला वो सत्य है। अब अगर ये इकोसिस्टम करता तो हम समझ पाते हैं, पर इस इकोसिस्टम को लेजिटिमाइज जो धरनाबाज राहुल गांधी है, जो रील मेकर राहुल गांधी है, जिनका पेशा बन चुका है झूठ बोलने का, वो राहुल गांधी एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के वीडियो को कोट करते हैं और ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये सत्य है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है, जैसा आपने दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, कि एक 10th fail नदीम अहमद था जिसको ये टास्क दिया गया था कि तुमको फेक वीडियो बनाना है और इस फेक वीडियो के जरिए अशांति और पुलिस या किसी भी स्टेट के ऑर्गन के प्रति, कल को पत्रकार भी हो सकता है, कल को कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, कल को सुप्रीम कोर्ट हो सकता है।

0: को, तीसरे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, उसके खिलाफ एक वातावरण झूठे नैरेटिव पे बनाना। अब जब ये अरेस्ट हो चुका है तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम और राहुल गांधी क्या इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि झूठ की दुकान चलाने वाले और झूठे नैरेटिव के जरिए इस देश में एक झूठा वातावरण बनाने का प्रयास करने वाले राहुल गांधी, जिसने दिल्ली पुलिस को फॉल्सली विलिफाई करने का प्रयास किया, क्या आज इस देश का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो राहुल गांधी से सवाल पूछने से घबराता है, क्या आज वो राहुल गांधी का जब झूठ पकड़ा गया है तो आज राहुल गांधी से सवाल पूछेगा कि राहुल गांधी जी जो आपने झूठ बोला वो पकड़ा गया तो उस झूठ झूठ के लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। और यही पैटर्न हम हर मुद्दे पे देखते हैं। और हम ये देश को सचेत करना चाहते हैं कि जो भी अब कांग्रेस इकोसिस्टम और राहुल गांधी बोले उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ झूठ है और लाइज है। वो लोकतंत्र बचाने के लिए यहां पे नहीं है, वो अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए है। और उसका एक पूरा मॉडल है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स को ये पूरा इकोसिस्टम फंड करता है, फंड करने के जरिए झूठे वीडियोस मार्केट में सर्कुलेट करता है, उस झूठे वीडियोस में स्टेट की मशीनरी, भले वो दिल्ली पुलिस हो गया, आज इस केस में दिल्ली पुलिस है, कल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो सकता है, कोई भी स्टेट की मशीनरी संवैधानिक ढांचे के खिलाफ ये एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं और इसको खुद एम्पलीफाई राहुल गांधी करते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी को झूठ के जरिए और स्ट्रीट एनार्की के जरिए हाईजैक करने का प्रयास कर रहा है, जो ये देश की जनता देख रही है। मेरा पहला सवाल राहुल गांधी से यह है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो जब फेक पाया गया तो आपने अपना ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया? दूसरा, जब आपने इस फेक न्यूज को आगे बढ़ाया और आपके पूरे इकोसिस्टम ने इसको आगे बढ़ाया, क्या ये फेक वीडियो बनाने का ऑर्डर और डायरेक्शन कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने दिया था? तीसरा, क्या ये इस देश के पत्रकारों के साथ में भी बड़ा अन्याय नहीं है जो लेजिटिमेट रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करते हैं, जो इतनी मेहनत के साथ जमीन पर जाके खबर को लाने का प्रयास करते हैं, आज कांग्रेस इकोसिस्टम क्या अपने पेड वॉलंटियर्स और पेड वर्कर्स को अलग अलग प्रोटेस्टों में घुसाकर क्या इस देश के फोर्थ स्तंभ को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहा है? पांचवा, ये एक पैटर्न है और इससे क्या कांग्रेस इकोसिस्टम इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास नहीं कर रहा है? इज द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधीज एंटायर इकोसिस्टम नॉट अटेम्प्टिंग टू डीलेजिटिमाइज द इंडियन स्टेट्स मॉरल फैब्रिक? राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी आर वर्किंग इन अ वेरी कॉन्शियस एंड अ कंसर्टेड एफर्ट वेयर their entire ecosystem is funding independent content creators which are not journalists. These independent content creators have been tasked by the Congress party in the Congress ecosystem, Rahul Gandhi in particular, to make fake videos. Aur in fake videos ke zariye ye is desh ke Indian constitutional fabric ko delegitimize karne ka prayas kar rahe hain. बात आज ये वर्दी को डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट को डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे और परसों ये किसी तीसरी संवैधानिक ढांचे को डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति,
1: All right, so the BJP, they're hitting out at Rahul Gandhi in the Congress over this fake AI video. The Delhi police has revealed one of the videos showing the Delhi police, manhandling women journals.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।

0: All right. So what is happening at this moment? It's sort of a Mexican standoff where Rahul Gandhi is not budging from his position. The police is not moving in to pick them up. And the Congress MPs insist that it is just not Rahul Gandhi who wants to go and meet the election commissioner. They also want the other opposition MPs to be with them when they go in and meet the election commissioner. So that's the big demand that has been, in fact, kept by Rahul Gandhi. Just a short while back, Rahul Gandhi, in fact, spoke to the media, very clearly said that if they want to pick us up, they can pick us up, give us another place where we can continue our protest. What Congress sources are telling us is that Rahul Gandhi has offered the option of the police had offered the option of sending a delegation to meet the election commission and represent their concerns, but Rahul Gandhi has refused and he has said that he is not going to go. All the opposition MPs together are going to be part of that the delegation that will go and meet the election commission. Let me very quickly go across to my colleague Jainendra, who's joining us. He covers the Congress party. Jainendra, Rahul Gandhi ne sirf ye baat bilkul seedhi boli hai ki ye sirf unke milne ka nahi hai, puri opposition election commission se milegi. Aur wo ye batana chahte hain, wo keh rahe jo media mein unhone kaha ki hum unhe unke muh par batana chahte hain ki aapne vote chori ki hai. What is happening with the Congress party? Rahul Gandhi kab tak yahan baithe rahenge us demand ko lekar?
1: बिल्कुल अंकित, बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी धरने पर कब तक बैठेंगे और कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से हमें नई जानकारी ये मिल रही है. पहले तो पुलिस के अधिकारियों के जरिए प्रस्ताव आया था कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन जा सकता है, अपना मेमोरेंडम दे सकता है और अपनी बात कह सकता है, जिसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जब भी मुलाकात होगी सभी 300 सांसद इंडिया गठबंधन के इलेक्शन कमीशन जाएंगे. नया अपडेट ये है कि कांग्रेस ने फॉर्मली इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्मल एक लेटर लिखा है और हमें कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऑफिसर आकर के ये एश्योरेंस दे कि अगले एक से दो दिन में मुलाकात करवाई जाएगी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तब राहुल ये धरना खत्म कर सकते हैं. हालांकि उसमें एक अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने अभी भी अपनी शर्त रखी है कि ये मुलाकात तभी होगी जब इंडिया गठबंधन के सभी 300 सांसद जो है वो मुलाकात के लिए मौजूद रहेंगे. तो अभी भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है. प्रियंका गांधी संपर्क में हैं और देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है.
0: Jainendra, thank you for giving us all those details. As Jainendra was saying, Rahul Gandhi has very clearly said that there is not going to be a middle path at this moment. And what you

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी।
4: यू नो डिजाइन कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
5: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
6: एक परिवार अटूट भरोसा।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back, ladies and gentlemen. We're coming to you live from the national capital, the heart of the national capital, the near Sansad Marg, where the Akashvani Bhavan is. And this has become the battleground, the political battleground today. This pillar has been my post for the last 7 hours. This is the 8th hour of the protest that Rahul Gandhi is on. And as the protest continued through the day, not one, not two, but three press conferences of the Bharatiya Janata Party to try and counter the messaging that was going on from here. Let's listen in to some reactions.
1: यहाँ से मुश्किल 100 मीटर होगा चुनाव आयोग और वहाँ नेता प्रतिपक्ष जाकर अपना एक ज्ञापन देना चाहें और उनको रोका जा रहा है और बड़ी बेदर्दी से सबको रोका जा रहा है. आपने देखा बाहर क्या हाल बना दिया. ये इस देश के लोकतंत्र की, देश की राजधानी में हालत है.
2: आगे
1: हम इंतजार करें, हम तो इंतजार करें, हम तो बैठे हैं यहाँ जमीन पर. आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, राहुल जी दिख रहे हैं, प्रियंका जी दिख रहे हैं, सब यहाँ बैठे हैं. देखिए ये जो एमपीज हैं, इंडिया अलायंस के एमपीज हैं, बीजेडी के लोग भी आए, ये लगभग 64% देश की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो आप मान लीजिए कि 64% देश आज सड़कों पर है, देश की राजधानी में, और उनको रोका जा रहा है और किस तरीके से रोका जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है.
3: मैं पूरे राहुल गांधी के इस आचरण की भर्त्सना करता हूं. वो एनआरकी चाहते हैं, कभी सेना प्रमुख को क्या क्या बोलते हैं, और आज जो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी भरा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर और मोहन भागवत जी पर, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं. राहुल गांधी अराजक हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी इज एनार्किस्ट एंड राहुल गांधी इज इरेस्पॉन्सिबल. और देश की जनता आपके इस आचरण पर कभी आपको नहीं जिताएगी. आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं.
4: दे आर डूइंग ड्रामा, दिस थिएट्रिकल ड्रामा मस्ट स्टॉप. सिंस 2014 कांग्रेस पार्टी हैज फेल्ड टू ऑब्टेन द मैंडेट ऑफ द पीपल, देयर बाय देयर फ्रस्ट्रेशन इज ग्रोइंग and they are attacking the constitutional authorities, they are attacking election commission, they are attacking judiciary. This will not work.
5: हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं. पता नहीं क्यों 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं. 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं. बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है. इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है. 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं.
6: अरे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, वोट को रिस्टोर करना, यह हमारा मकसद है.
7: बीजेपी कह रही है कि आप लोग चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
6: हम नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं. उन्हीं के लोग तो बताए कि वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है, और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं और सच्चाई बाहर आ रही है. तो हमारा नहीं, उनका है. तो ये मोदी का बीजेपी की चाल है कि सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहिए.
7: आगे क्या रणनीति रहेगी सर, आगे पुलिस ने
6: रणनीति, अरे लड़ने थे, लड़ने के लिए तैयार.
8: सहयोगी दलों ने ये निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे. इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है. और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं.
0: The action continues here outside the Akashvani Bhavan. We'll get into the latest details here from the very spot, which has now become, ladies and gentlemen, the latest confrontation between the government and the leader of opposition. Quick break. I'm coming back. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: तेरे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
0: Rang rang rang rang rang rang rang ne re dekho kaise bhi ho tin rang bana rahe
1: bojhe paints rang bana rahe।
9: R Pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday।

जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: वर्जे पेंट्स रंग बना रहे।
2: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट्स रंग बना रहे।

0: diplomatic leaders. And industry icons unite at the NDTV World India-Japan Summit, from friendship to future, as we honor the enduring legacy of former Prime Minister Shinzo Abe with chief guest Mrs. Aki Abe. Two economic giants, one shared vision. Be part of the conversation on NDTV World.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। Small?
8: Small? अब पूरी पिक्चर देख लो।
9: लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
8: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: claimed that the Election Commission had exposed its own allegations. Meanwhile, what we also learn is that Rahul Gandhi, along with Priyanka Gandhi and the other opposition leaders who were detained, have now been let go of by the police. We have a couple of reactions coming in on the day-long protests and the detentions. Let's hear some of them.
1: मंच और नाटकीय प्रस्तुतीकरण के में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कुछ आज दिनभर ड्रामा किया, अभी जो तथ्य औपचारिक रूप से प्रेस रिलीज के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उससे उनका झूठ बेनकाब हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, चुनाव आयोग से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट इंडी गठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
2: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। LOP की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भरम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
3: They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
4: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख कर लिख रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का, आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
5: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
0: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. But the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now, investigators are probing a larger question. Was this work of one individual or was there a wider network behind the creation, funding and even circulation of the fake content?
6: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने देखा कि एक CC फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये CC फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज एंगल है, एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
7: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर जिसकी तस्वीर आप सबने देखी।

0: Welcome, you're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. The big story, of course, has been the opposition protesting against the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. There have been protests, there have been detention, and we get you all the late night updates on that as well. But first, as always, the headlines. Opposition's big protest against CEC Gyanesh Kumar demand poll body chief's resignation. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and other opposition MPs were briefly detained after a long dharna outside Akashwani Bhavan. All opposition leaders, we now learn, have been let go from the police station. Air Marshal Ashutosh Dixit has been appointed new chief of the Indian Air Force, commissioned into fighter stream of the IAF in 1986. He has over 3,500 hours of flying experience. Air Marshal Dixit will be succeeding Air Chief Marshal A.P. Singh. Captain Smith's skull fractured in attack. Doctors performed reconstruction surgery after depressed fracture pushed fragment of skull nearer to his brain. Crucial bipoll test for TVK, AIADMK and the DMK in Madhurantakam and Dharapuram. Both constituencies record voter turnout of 85.99% and 80.31% respectively. Captaincy chapter closes for Harmanpreet Kaur. India's long-serving women's skipper stepped down as captain across all formats, paving the way for a new captain. The SIR showdown has escalated in Delhi, and this happened throughout the day, ladies and gentlemen. And this was with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and several opposition leaders who were detained after their march towards the Election Commission was stopped by the police. Now, the opposition says that nearly 300 MPs wanted to meet CEC Gyanesh Kumar and that the two election commissioners and demanded an assurance that the meeting would happen within the next 1 or 2 days. The Election Commission, however, says that the request came only after 4 p.m., involved an unusually large 240-member delegation and departed from the established protocol. As Rahul Gandhi was detained after an hour-long sit-in, the BJP accused the Congress party of creating disruption and claimed that the Election Commission had exposed its own allegations. Meanwhile, what we also learn is that Rahul Gandhi, along with Priyanka Gandhi and the other opposition leaders who were detained, have now been let go off by the police. We have a couple of reactions coming in on the day-long protests and the detentions. Let's hear some of them.
1: Punch. और नाटकीय प्रस्तुतीकरण के में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कुछ आज दिनभर ड्रामा किया, अभी जो तथ्य औपचारिक रूप से प्रेस रिलीज के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उससे उनका झूठ बेनकाब हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, चुनाव आयोग से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट इंडी गठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, एक ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है।
2: राहुल गांधी को अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अब वो अर्बन नक्सल की पूरी भूमिका में आ गए। LOP की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, भ्रम फैलाना उनका मकसद हो गया है, अराजकता फैलाना उनका मकसद हो गया है।
3: They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us. They are not allowed to detain women after sunset. They cannot detain us.
4: अभी तो शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पछताएगा कि आज मिला क्यों नहीं। आप लिख कर लिख रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया ना उसने कल का। आगे आगे देखिए क्या क्या रद्द होता है।
5: उन्होंने छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, धक्के मारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, हम इस देश के निवासी हैं, चुनकर आए हैं, हम मांग अपनी डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुनाह क्या है। और व्यवहार जो पुलिस साथ था वो ऐसे था जैसे किसी गैंगस्टर और क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है।
0: Well, another big story that made headlines in the national capital today was about how Delhi police arrested a 24-year-old man for allegedly creating and circulating an AI-generated video targeting the Delhi ACP Vivek Bhagat. The accused, identified as Nadeem Ahmed, was allegedly operating a social media handle called News Aina. Police now say that the video was designed to make it appear that ACP Vivek Bhagat was misbehaving with a woman protester. But the video was fake. The Delhi Police cyber team traced the content to Nadeem Ahmed, who police say admitted to creating the fake reel and posters using AI tools. Police allege that the content was created on October 3rd and was circulated the following day. Now, investigators are probing a larger question. Was this work of one individual or was there a wider network behind the creation, funding and even circulation of the fake content?
6: हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, तो उसने देखा कि एक सीसी फुटेज चलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट साइट का है वहाँ का है ये सीसी फुटेज, और इसमें दिखाया गया है जो हमारा पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, और उसमें उसका नाम भी बताया गया है। तब अब जब इसकी हमने वीडियो की जाँच की तो पता चला इसके पीछे न्यूज एंगल है एक नदीम अहमद करके, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वो पलोल हरियाणा का रहने वाला था और तुरंत हमारी टीम ने उसको लोकेट किया और उसको अरेस्ट किया, और उसी अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उसने शुरुआत के बयान में बताया है कि उसका वो एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करता है।
7: नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सब ने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक AI वीडियो को जनरेट किया, और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है।
0: Now, the showdown over SIR is not just limited to the national capital. Karnataka government is alleging that a coordinated attempt to misuse Form 7 during the voter roll revision is taking place. Karnataka government has alleged that pre-printed forms were used to target genuine voters. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, has made a sharper allegation that living voters were being declared dead through Form 7 applications. The NDA delegation comprising of Union Ministers H.D. Kumaraswamy and Shobha Karandlaje, Leader of Opposition R. Ashoka and others met the Karnataka governor and summited a memorandum over cases filed against the BJP workers. BJP has rejected the allegations and accused the Congress government of targeting its workers. And now, the Karnataka CEO has clarified the key point that no voter has been deleted merely because of a Form 7 objection.
8: I could convey only one thing to the voters of Karnataka. Just because of objections filed, no name has been so far deleted from the voter roll. It will be enquired by the concerned EROs and necessary action will be taken. To delete any name from the draft roll, the ERO has to issue notice for hearing. He has to call both the objector and the voter for hearing. He has to verify the documents. After, he can take decisions once he is convinced whether to delete or not to delete. So that is the procedure mentioned in the rules from section 16 to 20 of Registration of Electoral Rules 1960.
9: So not a single voter has been deleted
8: up until now, been deleted
9: sir?
8: So far.
10: All the opposition leaders, they have a right to ask this election commission and the president of India, why our upper state leaders have gone to the Rajbhavan? Because they are afraid. They did a conspiracy. They printed the Form 7. Then our workers have filing a complaint in the police station. Let they declare themselves that yes, we have given. The small workers in the conscience level, they were given. I also have a lot of friends